ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 16 जून मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खवानों से सुने समाचार। बैंक ऑफ जापान का कहना है कि वो अपनी मूल ब्याज दर को 0.75% बढ़ाते हुए लगभग 1% कर देगा, जो पिछले 31 वर्षों का सर्वोच्च स्तर होगा। बैंक ने मंगलवार को अपनी 2 दिवसीय मौद्रिक नीति बैठक के समापन पर ब्याज दर में वृद्धि की घोषणा की। महंगे तेल और कमजोर

येन के कारण मुद्रास्फीति बढ़ रही है, जिसके चलते ब्याज दर में बढ़ोतरी की अटकलें पहले से लगाई जा रही थीं। बैंक गवर्नर उएदा काज़ुओ अस्पताल में भर्ती हैं, जिसके चलते वे बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपने विचार लिखित रूप में प्रस्तुत किए। टोक्यो का प्रमुख शेयर सूचकांक निक्के 225 पहली बार 70,000 का आंकड़ा पार कर गया है। दोपहर के कारोबार में सूचकांक में कुछ समय के लिए 700 से भी अधिक अंकों यानी 1% का उछाल आया, जिसके साथ ही ये अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। गौरतलब है कि इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति ने ईरान में संघर्ष समाप्ति से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की घोषणा की थी। बैंक ऑफ जापान का ब्याज दर बढ़ाने का फैसला बाजार की उम्मीदों के अनुरूप रहा, इसके चलते निवेशकों ने मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर संबंधी शेयरों की लिवाली की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अमेरिका और ईरान ने महीनों से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाएगा। ट्रंप ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल माक्रों के साथ वार्ता की शुरुआत में इस समझौते पर टिप्पणी की। ट्रंप ने एवियन में कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य आंशिक रूप से खुल गया है। उन्होंने कहा, वे कुछ बारूदी सुरंगें तलाश रहे थे जो उन्हें मिल गई हैं, लेकिन अब जहाज निकलने शुरू हो गए हैं। शुक्रवार को ये पूरी तरह से खुल जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हस्ताक्षरित दस्तावेज शुक्रवार के बाद जारी किया जाएगा। एक वरिष्ठ अमरीकी अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि ट्रंप उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। अधिकारी के अनुसार जलडमरू मध्य 60 दिनों के लिए शुल्क मुक्त खुला रहेगा और उन्हें उम्मीद है कि ये अंतिम समझौते का हिस्सा बन जाएगा। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने पत्रकारों को बताया कि समझौते पर पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि ईरान अमेरिका के किए को माफ कर देगा या भूल जाएगा। बागई ने यह भी कहा कि लेबनान में संघर्ष समाप्ति को इस समझौते से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ईरान और ओमान जलमार्ग से सुरक्षित नौवहन के लिए समन्वय करेंगे और आवश्यक शुल्क वसूलेंगे।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान सरकार ने संघर्ष समाप्ति से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के संबंध में अमेरिका और ईरान के बीच हुई सहमति का स्वागत किया है। इटली की यात्रा के दौरान जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सनाई ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने अमेरिका ईरान समझौते का स्वागत किया और इसे तनाव दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। ताकाइची ने यह भी कहा कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना और उसका लगातार पालन करना महत्वपूर्ण है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर बिना शर्त और अप्रतिबंधित नौवहन की स्वतंत्रता के साथ हॉर्मूज जलडमरू मध्य को दोबारा खोलने में भूमिका निभाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। ताकाइची ने कहा कि जापान भी इन प्रयासों में शामिल होने के लिए तैयार है। सोमवार को पत्रकारों ने पूछा कि क्या जापान हॉर्मूज जलडमरू मध्य में बारूदी सुरंगें हटाने के लिए आत्मरक्षा बल को भेज सकता है। इस पर मुख्य कैबिनेट सचिव किहारा मिनोरू ने कहा कि अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि भावी घटनाक्रमों का अनुमान लगाना कठिन है। G7 देशों के नेता वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए फ्रांस के एवियॉन में एकत्रित हुए हैं। वे पश्चिम एशिया और उक्रेन में जारी संघर्षों सहित वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोमवार को फ्रेंच एल्प्स पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसे एवियॉन में G7 नेताओं का स्वागत किया और रात्रि भोज के दौरान वर्तमान वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन से ठीक पहले मैक्रों ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर अमरीका ईरान समझौते का स्वागत किया। मैक्रों ने कहा, इस समझौते का समर्थन करने के लिए हम अपना योगदान देने और अंतर्राष्ट्रीय

0: समुदाय की प्रतिबद्धता का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। मैक्रों ने यह भी कहा कि फ्रांस कुछ दिनों के भीतर विमानवाहक पोत चार्ल्स डिगॉल और अन्य फ्रिगेट हॉर्मूज जल डमरू मध्य भेजने के लिए तैयार है। 3 दिवसीय बैठक में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने जैसे आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मामलों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आर्थिक सुरक्षा और एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। G7 शिखर सम्मेलन के लिए फ्रांस के दौरे पर गए मोदी ने रविवार को नीस में मैक्रों से मुलाकात की। भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि दोनों नेताओं ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार दुगना करने के उद्देश्य से एक तंत्र स्थापित करने पर सहमति जताई है। गौरतलब है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए जनवरी में संपन्न हुई वार्ता के बाद ये कदम उठाया गया है। दोनों नेताओं ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने जैसे विषयों पर चर्चा के लिए आर्थिक सुरक्षा पर संवाद शुरू करने का भी संकल्प लिया। उन्होंने रक्षा और परमाणु ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने और एआई पर एक संयुक्त कार्यकारी समूह गठित करने की योजना की भी घोषणा की।
1: और अब अंत में आज के मुख्य समाचार एक बार फिर। बैंक ऑफ जापान का कहना है कि वो अपनी मूल ब्याज दर को 0.25% बढ़ाते हुए लगभग 1% कर देगा, जो पिछले 31 वर्षों का सर्वोच्च स्तर होगा। बैंक ने मंगलवार को अपनी 2 दिवसीय मौद्रिक नीति बैठक के समापन पर ब्याज दर में वृद्धि की घोषणा की। महंगे तेल और कमजोर येन के कारण मुद्रास्फीति बढ़ रही है, जिसके चलते ब्याज दर में बढ़ोतरी की अटकलें पहले से लगाई जा रही थीं। बैंक गवर्नर उएदा काजुओ अस्पताल में भर्ती हैं, जिसके चलते वे बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपने विचार लिखित रूप में प्रस्तुत किए।
0: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।